सावित्री समझाया मैं जिता के उपाया इतना नू तो मैं तौपत उपाया तू कृपा से जाने जिस बजाया सहजे ही सच माया।

पहला सुचा पोए सुचे बैठा सुचे अगे रखियो उनको ना भिटो जा सुचा हो के जे गया लगा पंच लोग हथी जाए सुटिया किस ए

आस्ते आसी सेजे आवा आगे से बावा के न भावा क्या जाना क्या होए गारी माई हर दर्शन।

निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले। पांच तरह का निर्धन नु पालना। पहला निर्धन नु पालना गुरु का सिख दसवंद कढ़े। सारे चाती पायो अगां अगां ज्यो प्रकरण आएगा। कोई माया का दसवंद नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन नु पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे। जेड़े बंदगी वाले महापुरश सारी जिंदगी जिन्होंने लेखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नु किहड़े ढंग नाल पालदे ने। उन्हां दा पालना किन्ना क उच्चा है, असी किते पहुंच भी नहीं सकदे। उत्थे वह अगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण पहला निर्धन नु पालना गुरु का सिख दसवंद कढ़े। सारे झाती पायो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਵੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ

हे ईश्वर साडा सुभाई है भूल जान असी कल जुगी जीव जो होए साडा सुभा है कोई सानू अखां विच पाण लई सुरमे दी सिलाई दे देवे असी उसका तो धन्यवाद कर देंदे हां पर तू सानू सुंदर नेत्र बख्शे हन कंचन वर्गा शरीर बख्शिया है चंगा रहन बहन पहनन ते होर बेअंत कृपा तू कीतियां हन असी तेरा शुकराना नहीं करदे तेरा शुकराना भूल जांदे हां इसलिए ए हमरो सुआओ ए साडा सुभा ही बन चुकिया जे एक जन्म दा होवे सुभा तां बदल लईए कईआं जन्मां तों इही सुभा तुरिया आ रहा है इसलिए तेरी रहमत ही सानू तार सकदी है तेरी बख्शिश ही सानू तार सकदी है ए ईश्वर अगे सारिया ने मिल के अरदास करनी है हमरो सुआओ हमरो सुआओ साडा की सुभा है आद अंत जो राखन हार ध्यान देना आद अंत जो राखन हार

मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। रब ते प्यारियां दी निशानी है जे घर विच दुख आ गया ता परमेश्वर दी रजा समझ के पाना मिठा करके मनदे हन। जे परमेश्वर ने खुशियां भेज दितियां ता उना खुशियां विच अहंकार नहीं कर दे, ऐसा नहीं कर दे दात प्यारी विसरिया दा तारा नहीं। आख्या ए भी परमेश्वर की दात है ते केतियां दुख भूख सद मार ए भै दात तेरी दाता। सदा उसकी रजाए विच रह के अपना जीवन सफल करते हैं जिवें कबीर जी कह

दर्शन दृष्ट ध्यान धर, दर्शन दृष्ट ध्यान धर, गुर मूर्त होई। दर्शन दृष्ट ध्यान धर, गुर मूर्त।

ज्ञान होया भगत सदना जीव के हुन मास विच ना छोड़ दिता एकाग्र चित होके प्रभु भक्ति विच लग गए ते मन विच इच्छा होई के जगन्नाथपुरी जाके प्रभु दे दीदार करिए यात्रा करके आइए। आप तुर पे रस्ते विच रात पै गई मन विच सोचिया भई चलो कितों पुरुषार्थ करके प्रसाद छक लेंदे हां जां शहर विच गए एक घर जाके बेनती कीती इत्थे एक मुटियार खड़ी सी जो बेनती करके अपने अंदर ले आई महाराज आओ इत्थे ही छक लो प्रसाद ते रात हुण कित्थे जाओगे रात भी इत्थे ही गुजार लो। बड़े प्यार दे नाल भोजन तैयार कीता भगत सदना जी जदों छकन लगे तां कोल बह के पखे दी सेवा कर रही है जिवें पत्नी अपने पति दी सेवा करदी है पर अंदर इस दे जहर भरिया होया सी। इस दी उम्र छुटेरी है आदमी इसका वडेरी उम्र का सी ते रोगी सी जिस करके इसका मन बेईमान हो गया। संत जी हुण किधर जाओगे इत्थे ही रात कट लो ना विशाई कर दिती। भगत सदना जी प्रभु सिमरन विच जुड़े हुए अज इत्थे आराम करन लगे तां अद्धी रात नूं हार शिंगार करके आ गई। कहन लगी आप आए हो तो हुण मेरी भी श्रद्धा पूरी करो। कामातुर होके हाव भाव करन लगी ते भगत सदना जी झट उठ के खड़े हो गए आख्या तू तो मेरी भैन है ते भैन नू इस तरह नहीं करना चाहिए तू मेरी भैन दे बराबर है असी इस नरक विच नहीं पै सकते। ओ मन विच उसने सोचिया भाई शायद मेरे बीमार पति नू वेख के डर गई ए डर गए हन मेरे बीमार पति नू वेख के झट जाके अपने पति दा सिर वड दिता ते सिर लैके आई। कहन लगी संत जी ऐसे दा ही डर सी ना आ मैं मार दिता क्योंकि नित दा रोगी है इसने मरना ही सी और मैं तुहाडे नाल साधुआं वाले कपड़े पाके मैं तुहाडे नाल जिंदगी बितावांगी। भगत सदना जी जान गए कि पता नहीं किस जन्म दा पाप दा बदला ये सामने आ रहे है कलंकनीय सानू हथ ना लावी दुष्टनीय तेरा संसार ते आया त्रिग है

प्राणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाया बुरियाया माचे धर्म दूर करमिया।

रीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राखे निरंकार। सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक सास सास समारे। अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे। अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत राखे ताकि गत मित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को पूर्ण पहुँचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया। नीकी कीरी मैं कल राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे। जिसका शासन काटते आप ताको राखत देकर हाथ। मानस जतन कल्त बहुपात किसके कर्तव्य बिरथे जात। मारे न राखे अवर न कोए सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडानी। बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत इहो मन तन तृपिए। नाम तन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्ट आया। नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जनते पताने मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम। बोलो जस जहवा दिन रात प्रभु अपने जन की दात। करे भगत आत्म कह चाहे प्रभु अपने से रहे समाये। जो हुआ होवत सो जाने प्रभु अपने का हुक्म बछाने। जिसकी महिमा कौन बखानो जिसका गुण कह एक न जानो। आठ पहर प्रभु बसे हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिठावे। अवर स्यान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होवी तेरा नानक।

नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना। सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना।

चले है पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना।

दो आलम कहंदे ने दो जहान तेगे तेगे क्या है तलवार नू किरपान नू नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त फजले कहंदे ने मेहर किरपा इना दोना लाइना दा अर्थ ए सिक्का दोहा जहाना वास्ते है गुरु नानक देव जी दी तलवार नाल अति शहनशाह दे शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

जिस थान ते हर आदमी नु शरण मिलदी है, जिथे एक सुंदर नगर वसदा है, अते जिस दा शिंगार ए भागा वाला तखत है, उस थान ते ए सिक्का बनाया गया। भाव कि ए जड़ा सिख राज दा सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी कृपा द्वारा मैं चालू कर रहा, इस राज विच सब बराबर ने, इत्थे सारिया नू सत्कार मान इज्जत मिलदी है, और ए सिक्का गुरु दी कृपा द्वारा सिख राज दा

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जिहा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार

थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिआ, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिआ हिरनी जिहड़ी सी मरी, उहदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बनिया, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बने।

आश्रम बना के रहन लग पया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़िया ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बैठ

जंगल विच भजे गए माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गए लाओ लश्कर भी नाल है ओदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां तां माधो दास गुस्से विच आ गया कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हूं पलंग तों थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती पर माधो दास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकिया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वल तुर पिया।

अपने आश्रम विच पहुंचे है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पलंग ते बैठे हैं। चार चफेरे सिख योधे शस्त्रां नाल सजे खड़े हैं।

अमृत भरी मिठी प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया मैं गोविंद सिंह हां बैरागी नहीं फटिया फटिया अखां नाल उन्हां वल तकिया जिन्हां नूं

जोरावर सिंह फतेह सिंह जिन्हां दी उम्र 6 साल 7 साल दे लगभग उन्हां नूं जिउंदिआं नूं नीहां विच चिण दिता गया। इह सारियां गल्लां माधोदास ने सुनिया, ओहदियां अखां विचों अथरू वह तुरे, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे ने। इतिहास दसदा है कि माधोदास ने बैराग अते जंगल नूं हुण छड्ड देण दा फैसला कीता अते प्रार्थना कीती

अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमां दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों गोदावरी दे कंडे तों